0: सबै हाम्रै मान्छे,
1: सबै हाम्रै मान्छे,
0: एकतामा
1: एकतामा
0: बाँधिएको
1: बाँधिएको
0: भारतीय
1: भारतीय
0: मान्छे
1: मान्छे,
0: गंगा पनि
1: गंगा पनि
0: हिमालयको
1: हिमालयको
0: बग्ने
1: बग्ने
0: नदी
1: नदी
0: नाला
1: नाला
0: भिजाउँदै
1: भिजाउँदै धरती सबै
0: बन्छ
1: बन्छ
0: उर्वरा
1: उर्वरा।
2: इप रेंडावदु चरणम
0: जात
1: धर्म
0: आफ्नै
1: खुशी
0: जस्तो माने पनि
1: हामी सबै
0: भारतीय
1: भारत
0: हाम्रो
1: பூமி.
2: பாட்ட முழுசு எழுதியாச்சு சுமன் கார்கி அவர்கள். இந்த பாடல எப்படி இசையோட பாடுறதுன்னு உங்களுக்கு கத்து கொடுக்க போறாங்க. இப்ப அவர் ஒரு தரம் பாடல பாடுவார், நீங்க அதை கேட்டு அதே மாதிரி திரும்பி பாட போறீங்க.